अधिया इस प्रभु, हमारे पापों के लिए तू मारा गया, हमारे शांति के लिए तू मारा गया, हमारे कोड़े का तेरे कोड़े खाने से हम सब चंगे हुए प्रभु। तेरा वचन भेज कर तूने हमें सभी को चंगाई दी, आशीर्वाद किया, बंधन से छुड़ाया प्रभु, निराशा में बचाया प्रभु, तकलीफ से बचाया, हमें तूने आनंद से भर दिया, इसे तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू हमारे कमी घटी को पूरा करता है, तू कभी हमें छोड़ता नहीं ना कभी त्यागता है प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, यस प्रभु धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं झुमके नाचूंगा,

तेरे पे चरणों में मुझे शांति मिलती है। यस प्रभु, तू ही हमारा चरवाहा है, हमें कभी घटी न हो सकती प्रभु। चाहे घोर अंधकार से भरी तराई में मैं चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगी, क्योंकि तू मेरे साथ है प्रभु। तेरी सट्टा, तेरी साथी, तेरी लाठी मुझे शांति देती है। जब मैं सहारे छूट गई, तेरी उपस्थिति मेरे लिए काफी थी प्रभु। मेरे शत्रु के सामने तूने मेज बिछाया प्रभु, मेरे सिर पर तूने तेल मलाया, मेरा कटोरा उमड़ रहा था प्रभु। मैं योग्य नहीं थी प्रभु, फिर भी तूने मुझे अपनाया, तेरे अनुग्रह से मुझे नया जीवन दिलाया प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, हमें मदद कर। हमारे हर गुनाहों को तूने ले लिया, हमारे पापों को ले लिया, हमारे दर्द को ले लिया प्रभु। तू मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी नहीं होगी प्रभु। तू मुझे हरी नाई ले चलता है, मेरे सिर पर तूने तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा था, लेकिन तूने फिर से अपने मुझे अपने गले लगाया, अपने बाहों में मुझे लिया प्रभु। मैं आज मांगती हूँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तू महान है, तू सुंदर है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। यस प्रभु, यस प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद करते।

खुदावने शु की आराधना। यस प्रभु, हम तेरी आराधना करते प्रेमी मन से। तू आराधन, तू जीवन दाता की आराधना करते प्रभु। तू शांति देने वाले की आराधना करते। तू प्रेम से हमें झांपने वाले की आराधना करते प्रभु, क्योंकि तू ही सबसे खुदावन है।

का प्रभाव में बलवंत होते जाओ। देखो, आज का हमारा विषय ही ऐसा है। हम इसीलिए हम प्रभु में उसकी शक्ति के अनुसार हम बलवंत होते जाए। इधर पोल सिखा रहा है कि हमें हमें सारे हथियार बांध के लेने हैं हमारे जीवन में। जैसे गलती करा से 5वां अध्याय से 22वां अध्याय वचन से पढ़ते तो उसके सारे फल दे गए, यानी वो सारे फलों में हमें बलवंत होते जाना है। वैसे ही इधर इफिसियन में भी हमें लिखा गया है, जो प्रभु ने हमें हथियार दिए, जो शक्ति दी है, उसमें हमें बलवंत होते जाना है। वी हैव टू ब्रीथ स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड पावर ऑफ हिज माइटी। उसकी पावर में हमें मजबूत होते जाना है। गॉड गिवन द पावर, दैट पावर वी बी स्ट्रॉन्ग एंड हिज ग्रेस अपॉन अस सफिशियंट, हिज ग्रेस फॉर अस एवरी वन। दैट्स व्हाई गॉड वर सेइंग, माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू। जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियन, उसमें 12 में 9 और 10 खेलता है। चलो हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियन का 12 का वचन पढ़ते हैं। उसमें पढ़ते हैं 9 और 10 वचन। उसमें प्रभु हमारे लिए काफी है, प्रभु का ओके काफी है हमारे लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हम पढ़ते 2 कुरिन्थियन 12 का 9 पढ़ते। 2 कुरिन्थियन 12 का 9 पढ़ते। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते। सच्ची में प्रभु तेरा वचन ताया हुआ है, कभी न पूछने वाला वचन है। पढ़ते 2 कुरिन्थियन 12 का 9 और 10। उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि ऐसी सामर्थ्य निर्बलता से सिद्ध होती। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया करता रहे। देखो, इधर 9 में पॉल कुरिन्थियों के लिए समझा रहा है और कह रहा है। पॉल कह रहा है इधर, उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता से सिद्ध होती है। प्रभु हमें उसके सामर्थ्य हमें सिद्ध करता है, इसीलिए हमें बड़े आनंद से और अपनी निर्बलता पर घमंड करता है। पॉल अपनी निर्बलता पे घमंड करता है क्योंकि पॉल प्रभु की शक्ति के द्वारा वो बलवंत था, मजबूत था। इसीलिए उसने सारी कलीसियाओं के लिए समझाया, अच्छी शिक्षा दी, और प्रभु में के राज्य में कैसे बढ़ना है ये देखिए सिखाया। लेकिन इधर पॉल और भी बात बताता है। इसी कारण मैं मसीह के लिए निर्बलता में और निंदाओं में और दारिद्र्य में, उपद्रव में, संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जब निर्बल होता हूँ तब बलवंत होता हूँ। पहला पॉल कहता है, जब मैं निर्बल होता हूँ तब हमें बलवंत मजबूत करता है। कौन करता है? परमेश्वर हमें मजबूत करता है। जब हम वीक हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तब परमेश्वर अपनी शक्ति के अनुसार वो हमें बलवंत करता है। कभी हम उदास हो जाते हैं और हम अपने आप को ऐसा कमजोर बना कमजोर हो जाते हैं। लेकिन इधर जब पॉल कमजोर था, दुखी था, निराश था, तब परमेश्वर ने उसको बलवंत बनाया। पहले परमेश्वर निर्बल हो मजबूत होने से पहले प्रभु पहले हमें निर्बलता पे कार्य करता है। जब हम निर्बल हो जाते हैं तब वो हमें मजबूत करता है और हमें शक्ति दिलाता है।
और पोल को परमेश्वर शक्ति दिलाता था। जब भी वो